नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं।

0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामूल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी सांगली केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झालेत। ऐकूया प्रकाश किरण। भावार्थ लेखन आशा गद्रे, वाचक स्वर चित्र हसनाळकर आणि श्लोक गायन केले ऋषिकेश बोडस यांनी।

0: है 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आषाढी एकादशीचा उपवास बेडेकरांच्या सात्विक उत्पादनाने होईल खास।
2: बेडेकर सात्विक शिंगाडा पीठ, सात्विक राजगिरा पीठ आणि सात्विक उपवास भाजणी।
1: 25 जुलैच्या आषाढी एकादशीला उपवासाचा सात्विक आनंद
3: बेडेकरांच्या सात्विक उत्पादनांसह।
4: 12वी सायन्स उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी संलग्न असलेले जयवंतराव भोसले कृष्णा कृषी महाविद्यालय रेठे तालुका कराड।
5: 4 वर्षांच्या BSc ऑनर्स ऍग्रीकल्चर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश सुरू।
4: अमानांकन दर्जा प्राप्त विद्यालय, अत्याधुनिक वायफाय कॅम्पस, जयवंतराव भोसले कृष्णा कृषी महाविद्यालय रेठे तालुका कराड। तुम्ही आपल्या www.jbkagri.in या वेबसाइटला भेट देखील देऊ शकता।

0: एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर

0: इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रही है। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1% है।
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुंबई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मुंबई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा

0: की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर

0: एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं, जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78 प्रतिशत हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
3: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: निर्मा से सारे दाग चले जाएंगे और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। सब दाग चले गए। सुपर निर्मा, मैं सप्तमान।
2: सचिन
3: मम्मी
2: सुपर निर्मा में है सचमुच अपनापन।

0: हेलो
1: नमस्कार।
0: हेलो नमस्कार,
1: नीरज लबारी बात कर रहा हूँ।
0: हाँ,
1: आप कैसी हो?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम अच्छे हैं। और हमारे यहाँ अहमदाबाद में मौसम भी थोड़ा साफ सुथरा है।
0: हाँ?
1: बारिश की जरूरत है लेकिन बारिश आ नहीं रही।
0: अच्छा,
1: आपके वहाँ?
0: हमारे यहाँ भी अच्छा है मौसम, आज थोड़ी बारिश हो गई है। पिछले 8-10 दिन में बारिश नहीं हुई थी, पर आज थोड़ी बारिश हो गई है हमारे यहाँ पे भी।
1: ठंडक हो गई?
0: हाँ, थोड़ी सी ठंडक हो गई है।
1: देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग में ठंडक तो कम ही रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है।
0: जी जी,
1: लेकिन फिर भी हम ऐसा करें कि पेड़ों को जो पेड़ हो उनको पालना चाहिए, उसको हाँ। पानी पिलाना चाहिए और कोई काटता है तो उसको रोकना चाहिए।
0: जी बहुत अच्छा।
1: और पर्यावरण की बात करें तो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें जिम्मेदारी हमारी है, और ये खतरा जो मंडरा रहा है तो उसको सुलझने के लिए हमें पहल करनी पड़ेगी, खुद से हमसे शुरुआत करनी पड़ेगी। कई ऐसी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे एक कापर की थैली लेकर सब्जी लेने जाए और वस्तु लेने जाए के लिए बर्तन लेकर जाए, तो हो सके इतना भी पर्यावरण के हमारी छोटा सा कार्य भी काम में लगता है।
0: जी बहुत अच्छा आपने बताया है
1: जी। और ये सब हमको प्रेरणा मिलती है आकाशवाणी के जरिए, आकाशवाणी छांगली हो या आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा हो।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा। तो कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गाना सुनना है अक्षियों की जरूरत शीर्षक गाना है लता की आवाज में।
0: ओके।
1: और हमारे मित्रों का नाम ले सकते हैं?
0: जी जी जी।
1: भारत में एक ऐसा ही ग्रुप है फोन इन ग्रुप, जो हमारे आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप का है।
0: हाँ।
1: सारे भारत के आकाशवाणी के फोन नंबर और फोन इन कार्यक्रम की यानी इन्फॉर्मेशन जारी करते हैं हम, और ये हमारे ग्रुप में 100 से ऊपर के सदस्य है, उन सबको ये गाना डेलीगेट रहेगा। इसमें भुवन भाई कड़ू है, गौतम राय बोले जी है, तुकाराम जाधव जी है, फिर भूपेंद्र वर्मा जी और गंगाधर सावंत जी, ज्यादातर मित्र हमारे महाराष्ट्र के हैं।
0: जी जी जी,
1: सकाल बात है दीदी के जरिए हम सभी जगह पर जुड़ते हैं।
0: ओके ओके, बहुत अच्छी बात है ये।
1: और ये गाना आप भी सुनोगे दीदी?
0: जी जी, आपके साथ हम भी सुनेंगे। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते।

0: रात कभी कभी।
1: श्रोताओं, जिंदगी में मोहब्बत तो कभी कभी मिलती है, पर हम अगले प्रोग्राम में जरूर मिलेंगे। तर श्रोताओ, हॅलो आपकी पसंद या फोन इन कार्यक्रमाचे सादरकर्ते श्रीनिवास जरंडीकर यांना आणि मला समृद्धी कुलकर्णीला आत्ता निरोप द्या। नमस्कार।
2: हॅलो आपकी पसंद।

हॅलो आपकी बसना फोन इन कार्यक्रम आत्ताच आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या सांगली केंद्रावरून. श्रोताओं, राजभाषा का प्रचार और प्रसार की भूमिका में हम आकाशवाणी सांगली की ओर से प्रयास कर रहे हैं. लीजिए सुने आज का शब्द, पहले अंग्रेजी में और बाद में उसका पर्यायवाची शब्द हिंदी में. आज का शब्द है क्रू. हिंदी में कहते हैं कर्मी दल. आज की सूक्ति, सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है. धन्यवाद. ऐकूया सुगम संगीताचा कार्यक्रम भावधारा.

0: तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुविनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसी हिट 58 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। श्रोते, दुपारचे 1:05 झाले आहेत। आता गीत बहार चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम सादर करीत आहोत। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया सुरेश वाडकर आणि आशा भोसले यांनी गायलेलं भालू या चित्रपटातील गीत। पी सावळाराम यांची रचना आहे आणि विश्वनाथ मोरे यांचं संगीत।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष की बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मानसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई

0: दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।

0: कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लंदन के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर ॲपसहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेत। नादब्रह्म अंतर्गत शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम आता प्रसारित करीत आहोत। आजच्या कार्यक्रमात ऐकूया वनमाला दीक्षित यांचं कर्नाटक शैलीतील व्हायोलिन वादन, राग अठाणा आणि सिमेंद्र मध्यम। सुरुवातीला राग अठाणा, त्यांना मृदंगम साथ केली आहे आदित्य राजगोपालन यांनी। ऐकूया वनमाला दीक्षित यांचं कर्नाटक शैलीतील व्हायोलिन वादन।

पत्थर की सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजनू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बागी नगर जबलपुर से रविंद्र सुभाष दिगंबर राजेश शिवम शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जानी धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से, केवर कॉलोनी बड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली।

का दोगाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार के गुलों को सुर में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से टुपनी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावल कन्नांग से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

उहाँको जिन्जुल सिंह सुन्ने आशाभोसले को आत्मसुन असद भोपाली के बोलने को सुन ढाला गणेश ने और फमेश की आप सभी ने संग छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी और केदारनाथ सोसाइटी से इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है रवि भाई सिसोदिया मुन्नु भाई सिसोदिया गीताबा सिसोदिया धर्मराज सिसोदिया करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलासागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास लक्ष्मी प्रसन्ना मनस्वी माहिती चंद्रया मल्लवा नरेश लवण्या मिलसिन रेवंत श्रीनु सुजाता ग्रीष्मा दीपक रमेश कनक लक्ष्मी श्रीजा साई कुमार और सुषमा।

गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था, इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकर लाल पारिक ने इन जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी मियां अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिडलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यही संपन्न होता है, रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहां बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूं।
1: कब तक आप खड़े हैं? थक गए होंगे, मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब?
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है, एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है,

0: यूँ जिंदगी तक गई हो वहां वहां जिस की माँ मैं नहीं रहूंगा।
1: लेकिन क्या कह रहे हैं
2: पिताजी?
0: मुझे नाम से न पुकारो।
3: आप आराम से बैठिए ना।
2: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
4: इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
2: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
3: आप जा कहा रहे हैं?
4: क्यों नहीं पूछना चाहिए क्या?
2: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
4: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
2: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
4: क्या कह रहे हैं आप?
2: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ।

0: क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस ने भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया। तुम क्या करते?
1: मैं क्या कहूँगा, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्यों की बलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में रेडियो से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। जी नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश का रंग तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
1: और कोई ऐसे रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके?
0: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित कहाँ जाएगा?
1: फिर कहाँ गए होंगे?
0: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा ऐसा न कर बैठी। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
1: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा।

0: मैं जरूर लौट कर आऊंगी।
1: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं। आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे पहले मुंह दिखाई राय रहती।
0: गलती तो जरूर हुई है माँ।
1: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
0: ऐसा ना कहो माँ।
1: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी।
0: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
1: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
0: माँ ये क्या कह रही हो तुम।
1: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
0: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता। पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
1: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
0: अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
1: कोशिश तो करनी ही है बेटे। मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठीक रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
0: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो। जो होना होता है वही होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता।
1: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी।
0: ये क्या कहती हो माँ।
1: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
0: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
1: तुम्हें बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ।
0: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
1: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
0: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा,
1: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी।
2: अभी ही आई हूँ माँ।
1: क्या बात है बेटी।
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
1: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
1: भूख होगी तो खा लूंगी।
0: पर इस तरह खाना पीना छोड़ देगी तो कैसा होगा माँ।
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
1: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
0: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
1: कहो ना, क्या बात है बेटे।
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
1: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ। तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ।
1: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी,
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ।
0: ये सब क्या कह रही हो तुम, बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
1: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूँ माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ, अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख

0: चैन होना, सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है। इसी के लिए तो पिताजी इतना परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूं माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
1: ये सब क्या कहती है बेटी, ये सब मत कहा मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
0: लेकिन तुम भी चले जाओगे माँ, तुम मैं कैसे रहूंगी माँ।
1: मैं अभी क्या कहा रही हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
2: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगा कर करेंगे। या और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोज कर घर ले आना है।
1: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
2: ये शिकायत क्या हो गया भैया, तुम सब कुछ जानते हो नरेश। मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सब रह गया, मुझे उनके कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, तभी आपका कार मिला।
3: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए।
2: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने कार का जवाब दे दिया था।
3: हाँ, मिल गया।
2: लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, क्या कहकर गए थे, कैसे गए वहां से?
3: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
2: मेरे कारण हुआ, मेरे कारण वो घर छोड़कर चले गए,
3: दूसरा क्या?
2: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
3: तुम सब समझते हो नरेश।
2: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
3: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती,
2: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
3: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ। मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
2: कुछ बात भी तो बताइए भैया।
3: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
2: गए तो थे।
3: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
2: हुई थी।
3: तुमने क्या कहा था?
2: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों में कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
3: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
2: आप तो यह क्या बातें हुई?
3: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
2: उन्होंने क्या कहा?
3: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
2: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
3: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे, पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
2: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ।
3: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है, उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
2: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या करता था?
3: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश, तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
2: जब ऐसी बात थी तो आपने ही तुम रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
3: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था, और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
2: जानता हूँ मैं वो खास काम, जमीन बाहर लेके खरीदी जा सकती थी।
3: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
2: ये सब कहने की बातें हैं भैया,
3: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं, अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
2: समस्या? क्या समस्या है?

0: के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
1: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
0: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
1: समस्या तो कठिन है ही,
0: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाए, कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
1: बदनामी तो होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
0: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
1: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।
0: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है और उसे हमें लोगों को सुलझाना है।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
0: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हमें लोगों की जिम्मेवारी है ना, अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हमें लोगों को निभाना है।
1: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया,
0: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
1: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करो।

0: तरफ से हमें लोगों को सुलझाना।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
0: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हमें लोगों की जिम्मेवारी है ना, अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो, हमें लोगों को निभाना है।
1: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया,
0: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
1: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा। वाले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
2: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
0: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
2: कितने दिन तो हो गए?
0: हाँ, इसी से मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहाँ जहाँ सूचना ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूम कर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
2: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
0: अब मैं क्या करूँ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
2: मेरी भी आशा शेष हो गई है, अब क्या होगा?
0: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
2: क्या सोच रहे हो तुम?
0: अब मैं क्या सोचूं माँ,
2: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो माँ।
2: अब मैं क्या करूंगी बेटे, अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
0: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
2: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरते भी तो शांति से मरते।
0: यह सुन मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
2: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
0: होगी क्यों माँ, कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
2: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
0: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
2: इतना आसान है बेटे?
0: है कि नहीं?
2: इतने रुपए लगेंगे?
0: हम लोग खर्च करने को तैयार हैं माँ।
2: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
0: मैंने नरेश से बातें की है।
2: क्या कहता है वो?
0: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
2: और उससे कुछ ना हो सका तब?
0: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
2: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है, क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
0: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
2: कौन करेगा इतना खर्च?
0: क्यों, मैं करूँगा।
2: सचमुच?
0: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
2: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
0: हाँ, सोच ही लिया है।
2: और बहुत से पूछा है तुमने?
0: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
2: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
0: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
2: अपने पिताजी के बारे में जो पता लगाते रहना।
0: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा। तुम क्या सोच रही हो कमला?
2: सोचना क्या है,
0: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
2: कैसी इच्छा?
0: कृष्णा की शादी की।
2: हाँ, शादी तो करनी ही है।
0: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
2: उसमें तो बहुत रुपया लगेंगे।
0: हाँ, रुपए तो लगेंगे।
2: आएंगे कहाँ से?
0: उपाय करना पड़ेगा।
2: क्या उपाय करेंगे आप?
0: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम लोगों को तो करना है ना।
2: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
0: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
2: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
0: तो दूसरा कौन करेगा?
2: नरेश।
0: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
2: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब तुम भी भाई कमाने वाले है, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
0: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना समझे तब?
2: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
0: और यदि वो समझने से इनकार कर दे
2: तब? तो स्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
0: क्या सोचना पड़ेगा?
2: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। कहीं ऐसी

0: गंदी चाह कर पैसे लगे।
1: ओहो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी। वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
0: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें। अपनी तीन बच्चियाँ हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को अभी तो देखना है।
2: भैया भैया भैया
1: क्या हुआ?
2: क्या नरेश? कृष्णा ने आत्महत्या कर ली।

0: सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है मेरी? किसने लिखा है?
1: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगे, तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज, हर मिनट, हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से उठ गई हूँ माँ। अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है। मेरे कारण पिताजी घर से चले गए। मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो। मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी, तुम चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता ना। देखो, मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती। मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई है, क्यों लड़की हुई? लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ, तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: आखिरी सीट तो पिछले बार लग हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। फिर मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है। ये अखबार आज का है?
2: हाँ, आज ही का है।
0: लीजिए,
2: देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने पत्र छपाया है, वही देख रहा हूँ।
3: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहाँ भी हो लौट आइए।

0: हमें माफ कर दीजिए, पूरा घर दुख में डूबा हुआ है, तृष्णा नहीं रही, माम मरना सुन है,
1: माम मरना सुन है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
0: क्या बात है भाई साहब?
1: मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, कृष्णा नहीं रही, क्या मतलब है इसका? कहाँ नहीं रही दुनिया में? नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
0: ये आपके घर की चिट्ठी है, लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
1: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
0: आपकी पत्नी बीमार है।
1: मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई, कैसे नहीं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मैं हर छोड़कर आग से काम, केवल दुनिया नहीं छोड़ सकती। उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसकी हत्या की है।
2: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका है सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे लग रहा
1: आता है?
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मौके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी, काफी पुराने दिन आपको।
2: जी, सही बात है
1: जी। अब रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो

0: सामाजिक संस्कारों में आपको मिला है।
1: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना मुझे, सुनाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ, और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई। और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था, लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो तुम, मैं रचाई, बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैंने ही रचाई, कहते और कोई कहानी है, मैंने कहा बतेरी है बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है, तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
0: तो मजा था कि सजा थी?
1: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ मजा जरा भी नहीं लगता था पहले, तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा बेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
0: सुंदर नाम।
1: लेकिन मुझे लगता है उन्होंने उसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
0: जी जी, हाँ
1: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना, मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
0: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
1: करेक्ट,
0: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
1: जी
0: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको,
1: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहीर नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे, कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था। मेरे बचपन में मैंने तो बहुत कहानियां सुनी, तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज शरीर को क्या सुनाया जाए उसका, तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें प्यार जतलाया, मैं जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी, और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी, उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की, और फिर सोचा वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धुरेली औरत थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह, फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई।

0: और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और पुणे आ गई।
0: हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे, और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम परांजपे।
1: परांजपे जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
0: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है, तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
0: ओह डियर, चलो, मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए, वो तो अभिनेत्री भी थी।
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू। हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता आपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी बाको कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं ली। लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांगर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड, मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की। हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था, वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजन खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए। रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोलीवाड़ा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो। और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोड़ी टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनके, वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैंसलर्स की पढ़ा, और स्टैंसलर्स्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो,
1: जी,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: है
0: कि रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हट के, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
1: शरारती
0: नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम्हें सही की तरह पिटाई करने का। और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
1: बड़ा प्यारा
0: तो, हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे, नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही, मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं।

0: बाकायदा मुहूर्त देगा और फिर तुलसीबाग करके पुणे में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले और छोटा सा जोड़ा था और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे, मतलब तुलसीबाग से ये छोटे छोटे मणि उसको क्या बोलते हैं पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या करता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से, और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की, सफेद घोड़ी एक्चुअल घोड़ी, फिर एक बैंड बुलाया स्काउट बैंड साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम लिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए फर्गुसन कॉलेज रोड से होते हुए फिर वापस, ऐसे पूरा हम डेकन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सही के गुड़िया की शादी,
1: गजब गजब, ये तो इतनी भव्यता के साथ शादी की गई
0: जी, और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई।
1: हाँ ये भी एक विडंबना की बात है, ये वाला जिक्र आगे की तरफ करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। लेकिन गुड्डी गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों,
1: एक फिल्म में जो बात आती है गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, मुझे लगता है उसी जज्बात को वो
0: क्या बात,
1: तो वो
0: सुनाइए
1: आगे बढ़ा बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स डिकेंस और सब बड़े साहित्यकारों को पढ़ रखा था,
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन, स्कॉट, और ये सब बड़ों की किताबें ये भी मैंने पढ़ी, नाना के साथ पढ़ती थी और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स,
1: वुदरिंग हाइट्स यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है, भारा भागवत और दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिवक की भी जो कि बच्चों के लिए है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से जो कुछ बचकाना कहूँ। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म होती है, रेडियो के प्रोग्राम होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम होते हैं और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की एक तरह से नाटकों के संस्कार पड़ रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात, वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी, बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया जो इप्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी और फिर मराठी में जागा भड़ानी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे, पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
0: जीवन शैली का,
1: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकरी, टेकरी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकरी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
0: हाँ, ये बड़ा मजेदार है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैसलाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई और मराठी कहानियों की फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बानूस, रामशास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सिंगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है, मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे कहानी। और वो जैसे कहानी सुलझती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था, हाँ, तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूं, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई। राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे, गाने वाले, तो उनको पीने की आदत थी और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा।

0: है पतंग, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनके बुरे तरह वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है। तो वो कहते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। सुरई की नोक ही कहते हैं ना, तो सुरई की नोक अटकती है और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा रही है, और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना। तो उसने कहा बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं थोड़ा घमंडीपन लगेगा लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था। ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ।
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है।
1: गजब गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा है वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार
0: जी, देखो तो वो साथ साथ होता रहा
1: है, कह के सुनाते हैं, दूसरी तरफ नाटक चल रहा है, माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा बनाती है। लेकिन दो बातें जो है वो मुझे बड़ी जरूरी लग रही है पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वहां से निकल कर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है। अब मैथ्स नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था, हा? और आखिरी महीने जैसा होता है मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया, सही परांच पे, और मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था। अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो मैंने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन, मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे, कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जा। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकिंगम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल। अब मुझे माँ का एक और ये बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे
1: जी।
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट, और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 101 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म,
1: पूरे याद है, शिव तांडव स्तोत्र।

0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ढगान से गड़गड़ाहट और निजान से कड़कड़ाहट से क्या डरूं, है ना। तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंके कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने भारी होते हैं, करके मैंने खोला दरवाजा। दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं, माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो, तो आप ऑडिशन के, मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है, वगैरह। ओहो, मायूस हुए सब लोग तो नहीं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगे आप, अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
1: जी।
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया, जैसे तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए।
1: वाह वाह।
0: और मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपने कैसा ठगाया, इतना इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया। और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट याद है शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं नहीं, ऐसा कहते हैं रेडियो पुणे एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
1: अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई,
0: 3 गुना। फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी। लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो एक दो दिन अच्छा लगा लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी डीडी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो मैं बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे, जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तेवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह, कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को पसंद आता था। और नाना ताई हरबा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था। तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गोदी मडगो करके घर का फोन दे सकती है?
1: वा, वा, वा।
0: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं। मैंने कहा हेलो, तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के, मैंने कहा हाँ हाँ, मेरा वो हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना? हाँ हाँ जी, हाँ मैं बोल रही हूँ। अरे ताई, एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई टेस्ट ऑफ रिकॉग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से,
0: आवाज से।
1: वाह।
0: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद आई, फला नाटक ये पढ़ा, वो वगैरह वगैरह, लेकिन

0: वो बात फिर कभी नहीं, जो आनंद वो पहले उसमें था ना, ताई ताई बोलते हैं ये ना, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, गदी भाटगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा,
1: दो आंखें बारह हाथ उन्होंने लिखी थी, ओपन जेल कंसेप्ट
0: का जो फिल्म थी,
1: वो तो गदिमा ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह, ए मालिक तेरे बंदे हम,
0: क्या बात।

0: सदियों से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक नाटक लिखती हूँ, तो एक नाटक मैंने लिखा पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जो न नजला मनती बोर एक पहा किती तेरी थोर, अगर उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आकर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो तानी लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं, मगर

0: कर करके पोपट, वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है, और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है हर एक के ऊपर, लिखता है मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ एनीवे, तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांचल कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पोले देशपांडे।
1: अरे वाह वाह,
0: कि सही तुझी श्रुतिका ऐकली, तुम्हारी श्रुतिका सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष, लिख रहा ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बाल उद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी का शाप, पत्ते नगरी, पत्ते नगरी पहले था पक्षांचल कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से, तीन नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं तो मुझे लगता है तीन नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूं हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
1: वाह
0: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीब का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और बान चार जो है ना अंग्रेजी नाम, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है और जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट इन ताश के उसमें, तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ हाँ ये शांति दूत बनेगा फला दिन का ये वो, और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे बुद्धि, एंड आई रिमेंबर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माय स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक हिन्स ये पत्ते नगरीब के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीब का, और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी का शाप, सरो की पड़ो, झाली का गम्मत, जादू का शंख, भटका के भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट, तो मैं लिखती गई, मौस प्रकाशन में छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में, और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बदूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
1: वो एक लड़की
0: दिखती है, नीचे दिखती है, नेहा
1: पत्ते से फैसला करते हैं कि जिसके पास रानी आएगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं, और वो दो मुस्टंडे बिचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
1: बारी बारी से फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बदूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बदूर का गाना लेके आते, हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में, जिस दौर की
0: कौन सा गाना सुनाओगे
1: आपकी पसंद
0: चश्मे बदूर का, क्यों नहीं वो काली घोड़ी द्वार,
1: बिल्कुल सुनते, काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते हैं।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहां से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य

0: कहां से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा, और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता है, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं देते, हो गया, इतनी मेहनत की, इतना महीना भर तालीम किए, हो गया। हाँ, हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होकर झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में। हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे, और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण दुबेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा।
1: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी,
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
0: हाँ? तो वो अखबार में विज्ञापन देखा।
1: हाँ, तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है।
0: अच्छा,
1: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़े चाव से, और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कैसे, तो एक महीने का, क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने से। एक महीने में शादी आपको पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे, वगैरह वगैरह बातें होंगी। एनीवे, तो आई ज्वाइंड NSD एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर। इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर, क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा में, वो था इब्राहिम अलकाजी।
0: क्या बात है।
1: तो वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब 7 जिंदगी में पूरा पड़ेगा, इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। तो फैंटास्टिक, ही वाज अ फैंटास्टिक टीचर, बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
0: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था।
1: नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
0: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक
1: जी, जी।
0: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
1: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया,
0: पत्नी जो होती।
1: हाँ, कालिदास की पत्नी, रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ हाँ करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस कर

0: वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफ कोर्स, मैंने एंटिगनी में इज़मिनी का रोल किया.
1: वाह.
0: हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी.
1: यानी जो आगे चल के सुधा शिवपुरी बन
0: जी.
1: रही थी.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी दोनों मेरे क्लास में
1: जी.
0: थे, और तब भी दोनों का रोमांस था. खैर वो बात और है. तो लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी इज रियली फर्स्ट क्लास. और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है, और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा, उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में अपने आप को इसे लुढ़क जाती है उसकी गोद में, और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, और ओह रोंगटे खड़े हो गए. क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है, वो इतना बढ़िया उसने किया. और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी. फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन. हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो. एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए, कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे. इतना बढ़िया उन्होंने, मतलब पूरा यही बदल दिया दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की, पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने. और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति
1: जी. तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह जाते हैं.

0: संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुइनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पोंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की

0: उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। गोवा के तलेगांव से विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। जेनिफर मॉन्सेरेट 3 बार गोवा विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने 2012 से तलेगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 33 ओवर में 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मध्यम लहरी 239.8 मीटर अर्थात 1251 किलोहर्ट्सवर आणि FM वाहिनीच्या 100.6 मेगाहर्ट्सवर तसंच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर श्रोतेहो आकाशवाणीचं हे सांगली केंद्र आहे। सायंकाळचे 6:05 झाली आहेत। ऐकूया कार्यक्रम लोकधन, सादर करते संजय पाटील।
2: आकाशवाणीचं हे सांगली केंद्र आहे। लोकसंगीतावर आधारित विशेष कार्यक्रम सादर करीत आहोत लोकधन, सादर करते संजय पाटील।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष की बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड किया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय

भारतीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू की उस याचिका पर सुनवाई हुई।

0: अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति के पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित

0: परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेस्सी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेस्सी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लुटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160 km long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan.

0: ये आकाशवाणी है। लोकसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ

0: तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
1: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हो जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खास कर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब वो लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसी कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसी कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम इस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बिल हो सकता है और माइंस से रिलेटेड कोई बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसपे मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए ऑपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करे और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं डिफेंस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेते, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जा 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करें।
0: जी जफर साहब, अब चलते

0: सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
1: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि मैराथन की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा ये मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है। नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करें, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या? जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हमने यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार जिसकी बात ये कर रहे हैं ना, ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और एसआईआर का जो मुद्दा है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और हम ये समझते हैं। और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
0: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
2: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त किए है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसको और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
0: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मानसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
3: देखिए, विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुस

0: टाइट कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की। 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि संसद के मानसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
2: देखिए अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देश के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की हुई और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन में प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, पर उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, जो लोग थे उनके वो जाहिर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरे तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे के चले गए वो भी नकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है जो भी इसमें चेंजेस के बाद है वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
3: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है क्या? क्या हम अगर ईरान के साथ अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज मगर इस तरह की बातें वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक

0: वांछे राजनीतिक मसले हैं उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं हो और SIT आपने गठन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपने जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उन पे आशा भरी निगाहों से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध डालें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमजद राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मानसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको भुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है।
1: जी अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे, उस समय बिल पास नहीं होने दिया। फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और CBI का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और CBI को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे।

0: ये संविधान के हत्यारे जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली बात ही जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग।
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है।
2: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है।

0: ग्लोब।
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, चूंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है।
2: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसे मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज है, और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखे हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी ना कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पर असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था, और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिन जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खड़ी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और उन लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा।
3: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों के, 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयूज थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच हो उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
4: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो

0: जैसा कहा कि हम युवा हैं तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मानसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आप क्या क्या संदेश होगा?
2: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित पे नहीं देश हित पे काम करते हैं और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुछ लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित पे काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत तो कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित है और देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपनी विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपरा के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय शौर्य भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरगन बैठक में उपस्थित रहे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देवारलू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
5: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले,

0: इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर से अधिक लंबा रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चलित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत प्राप्त हुई थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कई स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारतीय टीम ने तय समाचार मिलने तक 28वें ओवर में एक विकेट खोकर 168 रन बना लिए थे। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting at Parliament House, Annexe. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rajiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties

20 से ज्यादा घायल और अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर दुनिया भर में फुटबॉल का जुनून। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से

0: मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगे। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत और मोल्दोवा के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने कहा कि रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: अमेरिकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया।
3: अमेरिका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि उन्होंने ईरान की तटीय निगरानी सेना और वायु रक्षा केंद्रों, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन ठिकानों पर हमले किए। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार इस कार्रवाई में खास तौर पर गार्ड को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने ईरान के आहवाज में अमेरिका की MQ-9 ड्रोन को मार गिरा है। सेंट्रल खातम अल अंबिया मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि ईरान की सेना अमेरिका की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देगी। ईरान पर अमेरिकी हमले 8वें दिन भी जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष चल रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मुलाकात भारत तंजानिया की अटूट साझेदारी और जांजीबार के साथ भारत के विशेष संबंधों को दर्शाती है। श्री राधाकृष्णन ने बेहतर सहयोग के माध्यम से साझा विकास को आगे बढ़ाने में तंजानिया और जांजीबार के साथ साझेदारी करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। डॉक्टर हुसैन अली ने चेन्नई स्थित IIT मद्रास परिसर का दौरा कर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने IIT मद्रास जांजीबार परिसर की स्थापना, जल परियोजनाओं, ICCR छात्रवृत्ति और ITEC प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत के समर्थन की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज सुबह जांजीबार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: पेरू में एंडीज क्षेत्र में आए 5.5 तीव्रता के भूकंप से 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि अब तक लगभग 300 लोग विस्थापित हो चुके हैं। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र हुआनकायो प्रांत के सिकाया शहर से 2 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। पेरू के राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्थान ने कहा है कि लापता लोगों की संख्या के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय चर्च और कॉन्वेंट सहित कई इमारतें ढह गईं या उन्हें क्षति पहुंची। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,119 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता की घोषणा की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगे

0: ने कहा कि यह धनराशि आपदा से प्रभावित परिवारों को आवास, बुनियादी ढांचे और मूलभूत सेवाओं में सहायता प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच पर फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यू जर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लुटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान 4 बजे तक खुले रहेंगे। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 31 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। पूर्व विश्व चैंपियन और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना। जॉर्डन में अमेरिका के सैनिकों की मौत के जवाब में अमेरिका की सेना ने ईरान के पैरामिलिट्री इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर हवाई हमले किए। पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आने से 5 लोगों की मृत्यु और 20 से ज्यादा घायल। और अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर दुनिया भर में फुटबॉल का जुनून। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines: President Draupadi Murmu embarks on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia, and Romania.

कंट्रोल चैनल 14.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और 9 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का और हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फिरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब दोस्तों कहते हैं कि इश्क की कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो दिलों तक महदूद नहीं रहती उनका जिक्र जमाने की हर महफिल में होने लगता है और जब मोहब्बत के चर्चे सुरों में डल जाएं तो वो नगमा बरसों तक दिलों पर राज करता

ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमे से आज के सफर का आगाज करेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और वो नगमा है एक बेहद खूबसूरत फिल्म 1968 में आई ब्रह्मचारी से। इस गीत से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी मशहूर है। संगीत विद्वान और फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार ये धुन पहले किसी दूसरी फिल्म के लिए बनाई गई थी, लेकिन वहां उससे मंजूरी नहीं मिली और उसके बाद वो मायूस होकर वहां से निकल गए। मायूस जयकिशन ने मुंबई के मशहूर होटल गलार्ड में यह धुन शमी कपूर साहब को सुनाई। धुन सुनते ही शमी कपूर इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने निर्देशक बप्पी सोनी से इसे फिल्म ब्रह्मचारी में शामिल करने की गुजारिश कर दी। और फिर क्या था, यही धुन फिल्म के सबसे मकबूल और यादगार गीतों में शुमार हो गई। ये और दिलचस्प बात, बेहद खूबसूरत और एक और बहुत ही खूबसूरत बात इस फिल्म से जुड़ी हुई, इस नगमे से जुड़ी हुई, वो है कि इस गीत में जो महिला की आवाज़ है वो आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की, लेकिन उसकी आवाज़, उनकी आवाज़ की मधुरता और बनावट इतनी हद तक लता जी से मिलती थी कि ज़्यादातर लोग इसे उन्हीं की आवाज़ समझ बैठे थे। लेकिन बाद में जब पता चला कि यह आवाज़ सुमन कल्याणपुर की है, तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि वो बेहद खूबसूरत सिंगर भी हैं। ब्रह्मचारी फिल्म का वही नगमा बेहद खूबसूरत आवाजों में मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। ब्रह्मचारी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की अपनी एक अलग जबान होती है, कभी निगाहों से बयां होती है तो कभी एक मासूम से सवाल से छुप जी आती है। और जब दिल पूछ बैठे बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, तो जवाब सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि मुस्कुराहटों में भी मिलता है। उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा यानी वही नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं 1967 की सुपरहिट फिल्म मिलन से। और मिलन फिल्म का ये सदाबहार नगमा इस मधुर युग गलगीत को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है मुकेश साहब ने और लता जी ने, जिसे पर्दे पर सुनील दत्त और नूतन की सादगी भरी केमिस्ट्री को इस गीत ने और भी खूबसूरत बना दिया। इसके बेहद जज्बाती बोली के आनंद बख्शी साहब ने और सुरों की मनमोहक चादर बनी हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की। दिलचस्प बात यह है कि मिलन के गीतों ने गीतकार आनंद बख्शी की फिल्मी सफर को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म के गीत सावन का महीना, पवन करे शोर, राम करे ऐसा हो जाए और बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, इन गीतों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतकारों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी ने मधुर संगीत को भी खूब सराहा गया और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। और जब एक ओर लता मंगेशकर जी की कोमल आवाज नूतन के भाव को सजा रही थी तो दूसरी ओर मुकेश साहब की सादगी और दर्द भरी गायकी सुनील दत्त के किरदार में जान डाल रही थी। मोहब्बत की उस मासूम रिवायत में आइए हम लौट चलते हैं, जहां इजहार में शरारत थी, जवाब में हया थी और हर सुर में दिल की धड़कन सुनाई देती थी। तो आइए उसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

0: कार्यक्रम का ये बेहद खूबसूरत नगमा मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में और हर सिंगार की इस महफिल को यहाँ पर बस कुछ पलों के लिए रोकते हैं। उसके बाद जब लौट कर आए तो फिर और भी बहुत सारी बातें होंगी। बेहद खूबसूरत सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत।

भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

चैनल 16.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 10:48 और 10 सेकंड। महफिल सजी है हर सिंगार की, जिसमें सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं। कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, इंतजार से मुकम्मल होते हैं, और कुछ वादे लफ्जों से नहीं एक खामोश एहसास से भी निभाए जाते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत वादा है फिल्म चितचोर के एक बेहद खूबसूरत नगमे में। ये फिल्म आई थी 1976 में और इस बेहद खूबसूरत युगल गीत को अपनी रूहानी आवाजों से अमर बनाया है यशोदास साहब और हेमलता जी ने, और इसकी बेहद जज्बाती बोल लिखे और इसकी मधुर धुन भी तैयार की बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीतकार रविंद्र जैन साहब ने। उन्होंने इस गीत को लिखा भी और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा भी। बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही शख्स गीतकार और संगीतकार दोनों रूपों में दिल जीत ले, और रविंद्र जैन ने इस गीत के साथ यही कमाल कर दिखाया है। इस गीत और पूरी फिल्म से जुड़ी महाराष्ट्र की खूबसूरत कहानी भी है। इस फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन पंचगनी और महाबलेश्वर की वादियों में लगभग 25 दिनों तक हुई। फिल्म के कई यादगार दृश्य और लोकप्रिय गीत, जिनमें गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा भी शामिल हैं, पंचगनी की ही एक पुराने बंगले में फिल्माए गए थे, जिसे फिल्म में जरीना वहाब के घर के रूप में दिखाया गया। कुछ दृश्य अलीबाग के पास बसे शांत किहिम गांव में ही भी शूट किए गए, जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती आज भी फिल्म के हर फ्रेम में महसूस की जा सकती है। संगीत प्रेमियों के लिए या संगीत के चाहने वालों के लिए एक और दिलचस्प बात यह है कि गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा की धुन राग धनी पर आधारित है, जिसे कर्नाटक संगीत में शुद्ध धन्यासी कहा जाता है। इसी गीत के लिए केजे यशोदास साहब को 1976 का सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। यही फिल्म उनके शानदार बॉलीवुड सफर की शुरुआत भी बनी और उनकी रूह को छू लेने वाली आवाज ने हिंदी फिल्म संगीत में एक अलग पहचान बना ली। तो आइए इसी फिल्म चितचोर का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यशोदास साहब और हेमलता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

0: रचना के अंत में आपने सुना तनि आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही है रचना मनदि पुगंदद। सिंधु भैरवी राग और आदिकाल में रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: That was a tani avartanam performed by Shri B. Ganapati Raman on the mridangam and Udupi Shri S. Srikant on the kanjira. Srimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandadu, composed by Tanjavur Shankara Iyer in Rag Sindhu Bhairavi set 2.

रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती करूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वाज अकॉम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Recorded in the studios of Akashvani Madurai, this broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं।

0: नहीं मांगी गई है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engaging in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President